0: ただ、だわなんだ。先生、先生、今日に見えに行くら。なんなんですね。でね、レサルシュを勉強もらったん。でね、今日にまたどうだ。だがなしに、今日もピンタンだ。でね、さっきのシュを、今日もどうだったん。でね、ちょっと飛んだら。だがなしに、え、しかったらシュを勉強も全然止まらん。そうね、ついて、ちょっと4段。でね、他のシュを勉強、往前なんですけど、勉強4段。でね、進んだらね、ちょっと、たまの、ちょっと、ちょっと、だわなんだ。
1: 先生，你那个什么的，你那个学英语啦？
2: 那是。
1: 你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英语啦？那是。你那个你那个什么的，你那个学英 ले नो नो किनचला ले चेना सुनन जे इन टडी सुबे नमजा रे सोगे दा नाम बे सेजुन सिटी सो एपिनी ना
0: तांदो लुसी दे तागी सुगे सजे सुना नो सुनो यबियु नी ले पुये
1: नो नो
0: ए इबदी तागी सयु जीव ना लो देसा ना लो लेगा युबे सजे चुन योन ला सजी बिचुन योन ला पुये ना
1: निसे
0: Somebody they Jinju Yola Pula.
1: No, no.
0: Sibati Tatan or Kundi Nano, Yubi, Bin Kuni, like a Toto Pasana, the Joe Jazela, the Joe Tiwala, Kondosum Puya.
1: Nisse, no, no.
0: Oh, no. Tini, like a Jumbo, Nimatunu, Tada, Nimata, Nimatirinda, Jimbo Labatasta, Kondor Puya.
1: No, no.
0: No, kelati tini she to be tan to be.
1: No, so she got she did not na.
0: Samba no bula ta na, sa ti sa.
1: So she di sa ke chang se su wi bela.
0: Oh la.
1: Ni se tum ji si pi ro na na.
0: Sa ti sa la ma ti ma la ti.